0: Media Extreme Energy Drink.
1: 아니, 땅을 가졌게 매치니와 어, 질까이? 그의 퍼스널 넘버 블럭라이 바디 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레컴을 바이 아피스터리 아이라 블럭라이 라컬카이 아니, 뱅그리? 뱅그리? 아, 저스의 떨리 락파디 썸널 파디나 आफैना मोबाइल नम्बर फेरिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफैना ब्याङ्क देवी जानकारी पिन परिम दे आफैना ब्याङ्क खातै जानकारी अरू योरी थोनी प्रज्ञा सचेतल परिम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: लौननी दाई वनमा त आगो लागेछ निभाउन जाऊ न
6: हो त नि एउटा सानो लापरवाहीले सिङ्गो वन नै सखा भुनि भयो
7: हाम्रो वन हाम्रो धन डरेलो बाटो जोगाउन गरौँ जतन वनमा डरेलो लगाउने कानूनी अपराध हो डरेलो लागेको देखेमा तुरन्त नजिकको वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा खबर गरौ वन जोगिए मात्र हामी जोगिन्छौ
8: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा
9: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95 थोप्लो

बीमाको लाभ दि, आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका। आजै बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा अभिकर्ता। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौ।